आवाज आवाज रहे ने इन्हों एक साथी है एक साइड पर खड़ा है उन कुछ नहीं नजर आ रहा एक पास पैसे नजर आ गए ने अपने साथी इशारा तेन पैसों का कह रहे हैं।